मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला ठेला, अरे ठेला, अरे ठेला। शादी एक बरस का मेला, उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी

अब आटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चल देते हैं। आज जिसका शोक कर रहे हैं उसे तो नया जीवन भी मिल गया होगा। यही रीत है इस संसार की।

होता है ये जिंदगी के साथ लता जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। फिल्म नूरी का गीत पेश है

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

और यूं ही रोने नहीं दूंगा, अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। फिल्म एनिमल का गीत को आप सुने। उजाला रेडियो पर सुनने वालों, एक और गीत

तू हाँ तू मानू मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। गायक किंग की आवाज में एक और गीत पेश है अब। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Eind van de maand, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Den Haag, zeggen we, ja? Brazzafest. अब तू करता किन सकेगा बहुत ही अच्छा प्राइस में लाख प्राइस में ओके बोला जाएगा अर्ली बर्ड सुनने वालों अगर मतलब बाकी प्राइस जो नहीं अब बहुत मोय है कुछ सस्ता में किन सकेगा एक आतरो चौरो हमारे जान अब से लेकर छोरो चौरो आ जाएगा फिर तीन दूसरे मतलब रोज आपके पास आएगा समय एकदम सस्ता में कार्ता किने के ब्रासा फेस्ट के खाना ब्रासा फेस्ट पे उन्तनाओ रीखो

हम खमोन जाइला खबराय करे कॉफी एंड चाय के कोर्टिंग्स कोड तो खबराय करिए ओकर हाइगा कोर्टिंग्स कोड हाइगा जोन ओ हाइगा होंदर एन नल नल कोर्टिंग्स कोड जोन हाइगा एन नल नल अगर तू कोर्टिंग्स कोड खबराय करिए dan krijg je nog een kleine korting erbij. Na bohut barka wali, na bohut mota wali. Ik een mooi pater wali. Maar moeilijk het hoor, elke korting is leuk. Dus toen je abe brasafest.nl, toen maakte Hamar Sange Chan. Open je mobiel. Toen op een mobiel wat kool, ja to op een laptop kool, ja to op een PC starter. Ham toch eens samen deze. Ga even naar brasafest.nl. Toen waarop je dekje programma, Lamba Chaura. और तू देखिए टिकट और तू जाइए वहां पे जहां टिकट तू किन सकेगा ताकि ये ढेर मकलक ऑनलाइन रेगलर तू कौन अपन टिकट किन सकेगा वहां पे और अगर एगो देखिए कोर्टिंग्स कोड एक जगह लिखल बा हमने नहीं वर्ड वाला लिखल बा कोर्टिंग्स कोड की कोनो दूसर वर्ड लिखल बा हो सके एगो दूसर वर्ड लिखल बा मा ओही मतलब आएगा कोर्टिंग्स कोड तो तू इनफिल करिए 800 और तू प्रोफिटेर करिए एगो मोई क्लाइन कोर्टिंग मोई लगेगा एव फॉर द मेंस दी डेंक फन सुनना हमार खाती इनखवेकल थाईगा हमार खाती बहुत इनखवेकल थाईगा कोर्टिंग स्कोड ओदे से काम करे के ऑनलाइन की नेके हम ना मांगिला उसी जुबा हो सके तो ई हाईगा थ्रोमन्स ने डायमंड्स के अपनामे एगो उतना मोई अपनामे ना हाईगा हम फेली करेला

Ham Fenikerilla opnam wana mooi het chat, dus ik sla hem over. Laten we eventjes zien, dan gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ehu rahega yaar. Apan naach ke saath bhi. Gana ke saath, maa apan naach ke saath bhi. To aiye dekhiye. Dus hum bolat rahi, agar tu feni karega, ki bahut mushkil haiga aapke khati, online ki neke, ki computer computer ke cheez to like na haiga. Hoi sake to? Aur tu rahega Den Haag shahar mein, ma tu mange aave. Aur toke haiga tu falak oye fast pass. Tu jane to, Kortings pass, gemeente wali, oye fast pass. Oye fast pass, hum mein bolek chahiga. Amsterdam mein haiga bijvoorbeeld Stadspas. Aise haiga Den Haag shahar mein oye fast pass. Je Den Haag mein rahega, aur jeke pass haiga oye fast pass. Well, hum toke khushi karebe yaar. तो तू आई सकेगा वही दिन जोन दिन तो के आवे के बस नीचर के या तो अतवार के या तो दोनों दिन नतुलिक 29 अगस्तस तू आइए खमोन वहाँ पे जिया में और तू वहाँ पे तेर प्लेक कार्टा किन सकेगा मत 50% कोर्टिंग देख ले तो एक वाँ 50% जो ढाईगा Den Haag गमेंटे और उजाला मिल के भरीगा वो दोनों मिल के एक एक दिल देख करेगा आधा दोस और अधवा जुन्तो के भरे के बाद सो तो कितना मकलर तो अपन ओ ये फास लेके आइए एंड ये कोप दैट गवोन आन

रहेगा, तो संजना भी रहेगा वहां पे। आई ऑफ लाइफ इफ बाई द डायनासोर, हां एक से एक लड़की रहेगा स्टेज पे, तो स्लॉट वे इवन अ डेज लॉस्टर सो टॉक इन द मूड साइन फ्रॉम द डायनासोर रानी सर भाई दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। ऑलराइट लाइव ऑन स्टेज दोस रानी भी रहेगा। मेरी अर्जी मान है मौला तू है सब कुछ जाने वाला मैं हूं तेरा मानने वाला मुझको भी तो लिफ्ट कर। हेलो फिल डामस और दी ऑन स्टेज सोलो साइड लिफ्ट करा दे मुझको। अब हम सुनीला अब हम गनवन चलाईला dan drinkt het tot mij door dat er zoveel leuke zangeressen bij zijn gekomen in Nederland. Ik poos er haakjes schaarste door haar rato van de goede zangeressen. Maar het is een heel mooie, mooie haiga zangeressen. Zij is uit. Leuk. Zij is erbij.

dus. Zullen we Yesu niet even gaan genieten? Met elkaar daar. En we gaan er allemaal een brasa geven aan elkaar. Ja toch? Brasa fest. पूरा परिवार के साथ आप ये अकेले में तो कितना हुआ आवे के मख मा आवे के मन तो परिवार ले के आ सकेगा जो कुछ केंद्र में नहीं बा केंद्र अंदर इन में इतर त्रोम सोसो में एकदम ग्रातिस में आएगा भीतर माइक नतुली के नानी

को प्रॉब्लम ना हैगा फॉलो पार्केर दोस्तों ये वहां पे दन हाफ साउट में और तू वहां पे पार्केर कर सकेगा दरी दरी रास्ता पे इतना जगह आएगा दोस्त बहुत मक लगेगा ओ फेस से तू ये तभी हो सकेगा खेलने का प्रॉब्लम लाओ हम आपके सुनाए एगो फॉलोंदे सांगरेस या तो van de ene gaan we naar de andere toe. Dikje ja. En wat dacht je van haar dan? Zij is er ook bij. Alright. Roshana. Roshana is erbij. Roshana Balgo.

laatste weekend van augustus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. दो बजे सांझ के प्रोग्राम शुरू होगा. शनिवार के दिन और इतवार के दिन भी दो बजे सांझ का प्रोग्राम शुरू होगा. सात दागाओ दौर फन 12 uur, nee, van 2 uur in de middag tot 1 uur in de ochtend. En zondag gaan we door tot 12 uur.

अपना सा फेस पे रहेगा रोशना भी तो वही है खानाबरासा fest.nl एंड स्कोर ये कार्ट ईसा एक बहुत सस्ता हैगा दोस्तों सस्ता में किन ले 20 तारीख तक रहेगा सस्ता में एकदम दोस्तों खबोन अपन स्लाख मार दे ओके एंड है बात ना तू लग दी तो अंदर ही

ये गीत जो है ना आप किसी के याद में भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, गा सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए भी ये गीत है। कभी जम ना रहबे देख ले तो नारो उफर खातर में पर मोयर संजय। ऐसा ऐसा कलाकार हम लोग के बीच में आएगा सुनने वालों, और ऐसा ऐसा कलाकार भी वहाँ आई के ब्रासा फेस्ट पे आपके खाती गाएगा, आपकी मनोरंजन के खाते। और ये कलाकार जो है ना अपने लिए नहीं गाते, कभी नहीं, आपके लिए गाते हैं।

Beautiful. En dan gaan we naar deze toe, hoor. Totaal anders natuurlijk. Andere stijl. Maar het hoort allemaal bij ons. Waar, waar? Aple. Aple, sujal ke tamasa, sujal umrao. Surya ke saath, ye bhi rahege, yaar. Live on stage. En een heleboel danseressen. Na sujal ke saath khali. Met al die artiesten, met een heleboel artiesten. Maar sujal ke sange natuurlijk. Een heleboel danseressen erbij. Na ego, na duigo, na tingo. Een heleboel. Doe het je. Het wordt tamasa, het wordt geweldig. Het wordt vuurwerk. Het wordt heel chill. Doe het je. Brasa fest. Yes. Sujal ke saath. Toe kahe na aye. Hame bol toe kahe na aye. Die batia toe hame uitleg kar. Waarom zou je niet komen? Aan een Hindustani ke evenement pe. Ek dan bitter. Toke dar na haiga ki barish hoiga. Auto kaha parkeer karabe. Veiligheid na mohiga. Na yaar. Ujala ke haiga. Toe janega. Hame log dil lagi na karila waan pe. कोई आएगा वहां पे रोत्सोई करे, कोई आएगा वहां पे कुछ करे, कोई बनमासी भी. वेल, तू जाने हम लोग के बात ही तो तू जानेगा कि कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे. दोस्त वहां पे एक को प्रॉब्लम ना हो सकेगा. और अगर कोई मांगी प्रॉब्लम करे भी, तू जानेगा कैसे हम लोग इनक्राइब करे बे. एक को दिल लगी ना दोस्त. तोर फैलखाइत एकदम सेती. तोर गाड़ी ओतो जोन हैगा एकदम मोय से पार्केर करिए नेचर से. तो के ना हुफ खोजे के गली गली ना हवून. इन द ब्यूटीफुल जिया इवेंट सेंटर भरल है जगह. ओपन बार फरफूर से तू भी आ सके. मैं अपन ओतो से आ सकेगा देश भर में से. दोस्त नीता लिंद मैं सो इधन हा नहीं तू देख ले गूगल अते इवेंट जस्ट द वेरफ नंबर 11 देख ले तो द वेरफ नंबर 11 जिया इवेंट सेंटर. आदमी जोन सोचे तो कहाँ पे हैगा कैसे हैगा. बहुत मोय हाल बहुत मोय लोकांसी. अगर हम बोली ला बहुत सुंदर तो तू विश्वास कर ले हमसे. अलर मोइस सबसे मोय जगह एकदम सुपर द लुक्स. वहां पे तो वही है हलचल कलक होई हलचल कलक होई साथ है साथ सुजल के साथ

Hai, समैया थोड़ा कमती बातों तो समी गनवा तो चापे ऊपर स्नान करे छा सुजल तो के हम लोग देखे बे लाइव ऑन स्टेज ना तू लग ब्रासा फेस्ट पॉइंट एनएल तू जाई के सिटी कर ले अपन करता इस साइड करता जोन होएगा बहुत सस्ता दाम में मिलेगा दोस्त तू जाई के कौन किन ले यार रिकल कर ले चीजवा है वदा खिफन है हमदान ये दे म्यूजिकांत खेलेगा दमिया भी आई आई आई आई हाई मागनी तो अंदर नतूर्लक एक फन द गेसेलिगस्ते एक फन द गेसेलिगस्ते सांगर्स

Mr. Black live on stage Rasta Vesper 29 en 30 augustus, laatste weekend van augustus. Toke avik pariyar kaise tuna ye aur kahe tuna ye apan hindustani ke event mein tuna ye to kicker face pe jaiye. Agar tu hindustani ke event mein aaiye to kon event mein tu mange jaye Gorkhati special Danha shehar mein hila dekho hum log. सबसे बरका, सबसे बरका, सबसे मोई, सबसे खसालक इवेंट उजाला के साथ. उजाला वहां पे भी बनाएगा लाइव अर्थ सेंडिंग लाइव कार्यक्रम हम लोग बना बे पनाफन ब्रासा फेस्ट. दनहा के वेथ हाउस जोन हैगा, भी रहेगा बैल्क वहां पे हम लोग के आसपास, और बरका बरका आदमी रहेगा. नौया बरका बरका आदमी तू समझेगा हमका बोली ला तो उनके दर्जा है गाला वैसे बोली. उस सब रहेगा वहां पे बड़ा सा फेस्ट पे, और तू भी रही है यार तो हूं थोड़ो कमती बात है तो क्या आवेग पड़ी, और हम तो कहो ब्रासा दे पे तू आइए हमें खोज लिए वहां पे हम रहबे, हम कहो ना जाबे हम वे पे रहबे यार. मिस्टर ब्लैक या तो मोई गान है यार, रहेगा भाई चली सुने ई कौन ची है गान के हाईगा हम बता ही सकेला तो के निजाम वाकिद हुसैन द लेजेंड्स के साथ

0: लाइव ऑन स्टेज बड़ा सा फेस्ट पर यार तू ये समय कम है दोस्त हम जाए ना जल्दी जल्दी नंद फॉल खंड आई बोई एक अपना हमारे सही फॉर्म निचे मुका मुकेश लाइव ऑन स्टेज विद एक्सप्रेस एहू रहेगा यार ना तू लग मुकेश
1: तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
0: ओह यस
1: तुम्हें अपना बनाने की
0: तुम्हें अपना बनाकर हम रहेंगे यार
1: खाई है
0: वाद खवेल्दनार
1: आँखों में चाहत ही नजर आई है
0: En als je hem hoort zingen, hè, zou je bijna denken dat het iemand uit India moet zijn. Uit de Mumbai filmindustrie. Maar gewoon hamlukke jaar, hamlukke eigen. Mukesh.

जी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से समस्त परिवार लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रिय निखंत ख्यार औत लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतों के ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा परनाना और स्वर्गीय श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति दीमन जैत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सभी लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल की आयु में द्रिय निखंत ख्यार औत स्वर्गीय पत्नी श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति लड़कन जॉनी शॉर्शिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता, सभी दामाद और पतों के ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, दीमन जोयत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल इतवार के दिन में 2 बजे से 3 बजे तक मोरखन जोंदख में दफन ट्वी तो द्री उर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 बजे वोंसदखांस्टांद 1 उर किए जाएंगे वेस्ट खार्दे क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरसोरखिंग समस्त परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर दिस इज रॉबर्ट फ्रीजन फॉर द ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम जारी है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उदित नारायण और साधना सरगम जी।

पहला नशा पहला खुमार, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण एंड साधना सरगम से आप सुने जो जीता वही सिकंदर। हाँ, फिल्म कसूर का एक गीत,

और मोहब्बत हो ना जाए। कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने फिल्म कसूर का गीत। उजाला रेडियो है और जानकारी चाहिए आपको ना तो वेबसाइट पर आप देखें ujala.nl।

दिया तू मुंह मोर के न जा। क्या खूबसूरत गीत है ये दोस्तों, खुजों का दौर जुबिन नौटियाओ और फिल्म जज्बा। सुन वालो, यह है आपका उजाला रेडियो जो आपका खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ है स्टूडियो देन हाग से। और चलते चलते हम आपको ले चलते हैं अगला गीत की ओर, एक खूबसूरत गीत एड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव एट द फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एक खूबसूरत शानदार लव गीत। सुन वालों एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं। Geniet van de dag, geniet van elk moment. En doe dat samen met je favoriete radio, Ujala Radio.

0: तुझे भी पता मुझे भी पता, ये जो भी है दिल की है गलतियां। It is a solo version of the song Yada Teriya, gesongen door Mr. Rahat Fateh Ali Khan, gebracht uit de film Hero.
1: Yes, a new fire tune.
0: यह है आपका उजाला रेडियो दोस्तों, जो हर जगह हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हूं आपका सेवक अमित जयराम, और एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं ये शो फनाई द स्टूडियो इन देन हाग।
1: फुल इफेक्ट टॉप शॉट दिस इज बॉक।
0: Geniet lekker van je dag. Geniet van de heerlijke, lekkere songs.
1: Yeah.
0: Zo ook met deze van de bandformatie Daisy Crew Holland. Gietka naam het Toe Hemerie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Niet ik tera suit, niet ik tera gani. De stem van niemand minder dan Maninder Bhutar in deze single song release Ghana. Heerlijke Punjabi flavors, heerlijke feel good Ghana, heerlijke dhamaka Ghana. Je hebt Ujala Radio. और आज अमित जयराम के साथ
1: मुंडे कुड़िया पंगड़ा पौन
0: हिट गानों का मेगा हिट के साथ वो ब्लेव है इन दी पंजाबी फ्लेवर दिस केयर आउट द फिल्म गुड न्यूज आउट द ईयर 2019 और गाने का नाम है लाल घगरा सो सेगे एंजॉय गनीत एंड बेवेग ook een beetje mee

तेरा हो जाऊंगा, तुझमें खो जाऊंगा, खो के मैं तो यारा। क्या गाना, फिल्म का नाम है पागलपंती। तेरे आप बेमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। और आवाज है असीस कॉल एंड जुबिन नौटियाल। Enjoy the Moi Moi Gana, Ujala Radio, keeping you on the move with your best friend Amit Jayaram. Het is tijd voor de stem van Tony Kakker. In deze heerlijke single song release Gana, organica naam hai Dhime Dhime.

प्यार तो था अब प्यार ही अब प्यार हमेशा ही रहेगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल गाना, जिस टाइम फ्रॉम जुबिन नौटियाल, गाना मेट अब्सोल्यूट सोना चेहरे या पोटेंशी, सेग इक आल्टाइड।

कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा, यह गाने का नाम है कैसे हुआ एंड दैट इज वेयर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग आउट द फिल्म कबीर सिंह। सिर्फ ब्यूटीफुल खूबसूरत गाना हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो। Zou zeggen, geniet lekker van jouw heerlijke radiostation. Geniet lekker van deze heerlijke dag. Je weet het, you only live once. Live it up every day. Uit de film Arakshan uit het jaar 2011. Ook weer een Ghana om nooit te vergeten. Ghana kanaam he Achal Gatahe.

हमरा अब से मेरा तू, हमरा मैं भी तेरा हूँ। अरे फिल्म मलंग में तीन हॉफ्ट रोल आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी एन ओक अनिल कपूर इन डेजे फिल्म आउट इट यार 2020। एन इट इस वीर ना 2013, ना 7 यार दैट अनिल कपूर अ रोल आन हेफ्ट गेनोमन फन पोलिची अगेंट। द लास्ट केर दैट हाय गेएक्टेर्ड हेफ्ट अल्स पोलिची अगेंट वास इन द फिल्म, या मिस्किन वेट इट वेल, द फिल्म शूट आउट एट वडाला आउट इट यार 2013। Beautiful songs and beautiful Ghana here on the one and only Ujala Radio. Aur wo bhi Amit Jairam ke saath. It is mera aur aapke saath here by the one and only. Aur film ka naam hai Made in China. Aur Ghana ka naam hai? Ghana ka naam hai Valam. The stem van Arijit Singh.

तुझे जितना मैं प्यार करूं यारा किसे और से ना किया। दिस टाइम फॉर अरिजीत सिंह असम में प्रिया शराया हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। हिल का गाना आप सभी के लिए eventjes terug naar het jaar 2007. De stem van Himesh Reshamiya. Organa kanaam he Meri Aanwargi. En dit is de remix versie.

सात बजकर 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, 15 तारीख और वो भी अगस्त साल 2026। बहुत सारे हफ्तों के बाद आज फिर मौका मिला है मेरे प्यारे सुनने वालों आपका सेवा करने का, और मैं वादा करता हूं आज आया हूं एंड आने वाले 8 हफ्तों के लिए लगातार सभी दिन जो हम प्रोग्राम बनाते हैं अब लगातार हम आपका सेवा करेंगे। तो सभी को रतन तहे दिल से दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। आप सभी को शुभ रात्रि कहते हुए आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदरपूर्वक है। शुभ वीकेंड, खनितवाई वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों। और आजकल मौसम का हालात बहुत खूबसूरत है, कुछ लोगों फकांसी बीत चुके हैं और बहुत सारे लोगों का फकांसी अब भी चल रहे हैं, जिस तरह से हो और जिस तरह से भी हो आप एंजॉय करें। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनोलों पेश करने जाऊंगा, बहुत दिनों के बाद 5 घंटे लगातार आपका सेवा करेंगे हमेशा की तरह, अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक विद ब्यूटीफुल लोकल्स मेरे प्यारे सुनोलों। और बहुत सारे गाने रिलीज हुए हैं और बीते हुए महीनों के भी कुछ गाने हैं जो हमने चलाए नहीं अभी आप सभी के लिए। आज जो भी चलाएंगे इनर फालसू फिल्म उखलक I20 और खास करके ये महीना अगस्त का। मेरे प्यारे सुनो, इस प्रोग्राम के दौरान आप सभी को तो मालूम है, जो लोग सुनते आए हैं हमारी ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, जितने लोग भी ऐप करेंगे स्टूडियो में, आप ये कश उठाएंगे ऐप करने के लिए स्टूडियो में, तो आपके नाम से हम गीत एक लोकल अपने प्लेलिस्ट से निकालकर आपके नाम से चलाएंगे। देखो इसे सैन फमाई खीन टिटल्स दूर खीव, हाँ ये कह सकते हैं कि विलियन स्नेलर नंबर और रुस्टक नंबर तू जाने तो। और आपको ऐप करना है, अभी से आप ऐप कर सकते हैं 020-363-0800 स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर है। और मेरे प्यारे से नोलो, गाने हम 8 बजे के इश्तिहारों के बाद सेवा में पेश करेंगे, जस्ट ना द क्लॉक फन 8 uur, ना द कमर्शियल ब्रेक फन 8 uur। देखेंगे कि कौन है जो ऐप किए हैं, तो उन सभी के नाम से हम गाना चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। जो स्वीत ईर्स्त कुंत तू जाने चीजवा कैसे, तो देरी से आप ऐप करेंगे तो देरी से भी आपका गीत आएंगे मेरे प्यारे से लोलो। वो तो छोड़ो, आपको तो मालूम है हमारे ये प्रोग्राम के दौरान सो जब भी हम प्रोग्राम स्टूडियो में आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं लाइव एंड RIQR के स्टूडियो रोहतनाम से, हमेशा आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं अब 020-363-0800। और रहे दफ्तर की कार्यवाही मेरे प्यारे से नोलो, तो आप व्हाट्सएप बिल्कुल ना करें, दफ्तर की कार्यवाही दफ्तर में होता है, धार्मिक आने क्यों नीत हेल्प तू जाने तो। तो आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे दफ्तर को तार कर सकते हो, आपके फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे अब 020-409-0807 या तो लगातार 24 घंटे आप मेल करें info@ujala.nl। और अगर आप मेल करेंगे नमाक इतनी आयत, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, कहीं आए उजाला रेडियो आप फरमाइश दे सकते हैं, जरूरी खबरें दे सकते हैं, मौत की खबरें भी दे सकते हैं, दैट कैन ऑल विया द मेल info@ujala.nl।
और मेरे प्यारे सुनने वालों, सोशल मीडिया पर उजाला रेडियो भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और नेटवर्क यूट्यूब पर जोड़ जाइए हमसे और फायदा उठाइए खबरों के साथ जो हम वहां पर छापते। आप आसानी से पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे या आप शेयर कर सकते हैं। ये खाना दिल ये भी तो खाली देंगे स्वच्छ कानून में ती बरेख तक, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उजाला रेडियो को सोशल मीडिया के साथ। तो मेरे प्यारे सुनो, अगर आप सभी तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, बेचैन हूँ, इतने हफ्तों के बाद काफी बेचैन हूँ आपका सेवा करने के लिए। और आप लगातार व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, 020-363-0000। और हम पेश करेंगे आज का ओपनिंग सिलेक्शन विद अ ग्रेट ऑर्केस्ट्रा ऑफ हमारे भारत देश, जो आज अपना इंडिपेंडेंट डे अनुफांकल साहिद दाख भी मना रहे हैं। तो सभी को बधाइयां, शुभकामनाएं।

या जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम हो चुके होंगे कि ये था एक लंबा चौड़ा मेडली विद ऑल शमी कपूर सॉन्ग्स, और ये हमारे भारत देश का एक ऑर्केस्ट्रा है, द तेजस एंड मिताली कलेक्टिव। और आज हमारे भारत देश, हाँ जी, भारत देश का इंडिपेंडेंस डे है। ऑनर फंकल साहित तो सभी प्रिय सुनने वालों को बधाइयां, शुभकामना, जय हिंद। फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, 4 मिनट बाकी हैं सरे 7 बजने में, लाइव एंड आरएक्यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। बहुत हफ्तों के बाद मौका मिला है आज फिर प्रोग्राम सजाने का, सैटरडे नाइट फीवर हेरल का प्रोग्राम है द मोई लोकल्स, जो हमने चुन चुन कर लेकर आए हैं। लगभग 400 गाने आज की प्लेलिस्ट में शामिल हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, अमरीचस फान त्रिंतख सेशन त्रिंतख एंड खास करके ये महीना का नगमाएं जो रिलीज हुए हैं पेश करने का, और ज्यादा से ज्यादा तो चलता नगमाएं निकाला गया है, रिलीज हुआ है और उससे हमने शामिल किया है प्लेलिस्ट में। एंड नैचुरली कैसे नोख है लबुन खान फोर रहमान, जो हम चला नहीं पाए हैं, कारण ये है कि मैं नहीं था बहुत हफ्तों के लिए। तो बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, और इस गीत के दौरान इतने सारे लोग ऐप कर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, कि आपको ये भी मालूम रहे कि अगर आप अब से ऐप करेंगे या दन सित्योली चे नीत इन इत ब्लॉक के फन 8 tot 9, मार होक्स वर्सखैंलक इन इत ब्लॉक के फन 9 tot 3। हाँ जी, आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं मेरे प्यारे सुनने वालों, 020-363-0808। तो आप सोचते होंगे एक है हालफ आख है पिक मैं एपी खस्तूर अब बे हालफ तीन होई गया मर गनवा कैसे ना आयल, omdat ik het doe op volgorde van binnenkomst van de appjes. Or kono kono gana chota hai, kono kono lamba hai, tu jane toch. Sab teri meri hai, yeah? Kono kono gana sandopi hai, or kono kono gana itne lamba jese bonus ta. Jo log is waqt kaam par hai mere pyare sunne walo, dil laga kar kaam karna. Het is eigenlijk geen weer om te werken, want het is warm, hè? Maar het is vergeleken met de afgelopen 2 dagen, aaj het thora sa cooler tha. Aur Rotterdam shahar mein barish bhi hua hai, aur kuch orchestra bhi baje hai upar, dhamakedar wala. Fotograaf bhi raha, kuch chamakta foto bhi banaya gaya hai, chaand se. En dat maakte het een stuk koeler. Kruki, hamari is desko chahiye pani. Hena. Jerry Khayyam, mere pyare sunne walo. Ek urban mashup, jiska title hai Naina, pesh karne ja raha hoon. 020-363-0808. Jahan par aapko hi hello karne hai WhatsApp ke zariye.

This is the Chutney Queen from Trinidad and Tobago, Savita Singh ji. और आजकल हमारे इस देश में काफी है उमोरे सजना मेरे प्यारे सुनवालो बुलाते 36 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल ऑफ आख मेरे प्यारे सुनवालो सर 7:06 गुजर चुके हैं आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेज उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनवालो यू आर के स्टूडियो रोटरडम से लाइव प्रोग्राम बहुत हफ्तों के बाद हम सजा रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स और बहुत सारे नए गाने हैं इसमें हैं लोकल्स उम्मीद और आशा करते हैं कि सुनते वक्त आप काफी मजा ले रहे होंगे द फ्रमासी फ्री स्टाइल फ्रॉम सूरीनाम पेश करता हूं नीलम माटादिन और सुधीर सेवदत जी

सुधीर सेव तत मेरे प्यारे सुनने वालों और नीलम माता दिन फरमासी फ्री स्टाइल और कुछ इतनी नी पॉप हो जाए मेरे प्यारे सुनो क्यों क्या ख्याल है 023 यहाँ पर आपको ऐप करना है अगर आपको चाहते या आप चाहते हो कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं फोन ऐप स्टूडियो में था हेलो एक बेन हुप एन एक ऐप फंदार एन दार बस यही काफी है maar oké, okay, je mag ook aangeven, je wilt een rustig nummer of natuurlijk een snelle nummer. Dat maakt het voor mij ook makkelijker. 020-363-0808 Organe, hum aante bij je kebaat, appers ke liye chalayenge. En als je nu gaat appen, dan zit je in het blok van 9 tot 10. Aapko malum rahe. Rihanna, mere pyare sino alo, apne jawani ke baare mein kuch gaayenge. Aap logon ko bataayenge. Meri jawani...

रिहाना मेरे प्यारे सुन वालों, खूबसूरत ट्रिनी पॉप सेवा में एनोख इमांत आई द ट्रिनी पॉप सीन मैं तन मोयन मत रूप तेरा मस्ता

0: ऐसे ही मानो मेरे प्यारे सुनने वालों, हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार का ये नगमा।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।
0: इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड इट इज किंग सेलेक्टा एंड डी ओ जी 020-363-9898। स्टूडेंट एपीए से हाय हेलो, तो आपके नाम से भी गीत हम चलाएंगे एक लोकल।

किंग सेलेक्टा मेरे प्यारे से नॉलो किंग सेलेक्टा एनडीओजी जफरमासी टू फेमस। ये पहला जो घंटा है निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर पांच घंटे का ये प्रोग्राम का पहला घंटा निकला जा रहा है। अंदर है सोफल मेंस और नोटिस ऐप कि जब आप ऐप करेंगे इस वक्त स्टूडियो में तो गीत तो हम चलाएंगे आपके लिए जरूर से जरूर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन फोकन ब्लॉक में आपका गीत हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि 8 बजे से 8 बजे की इश्तिहारों के बाद लामत खुद से इश्तिहारों के बाद लोगों के लिए जो ऐप किए हैं हम एक लोकल चलाएंगे और ब्लॉक 8-9 एकदम भर गया एन वैसे न्यू ब्लॉक 9-3 आनंद फुल। तो आप भी चाहते हैं कि उस ब्लॉक में आपके लिए भी मैं गीत एक चलाऊं, je mag aangeven, het mag een snelle nummer zijn of een rustige, alleen geen titels. Vooral de nieuwelingen, of voor het eerst app kringen. Geen originele songs, of geen titels doorgeven. Alleen je naam, of app kan ze app kringen, of kan hoor, ik wil een soul, of je wilt een chelta. Ziek hè? 020-363-0808. तो क्वीन रहाना हम लोगों ने सुना, अब क्वीन जो है निशा, और क्वीन निशा इज रियली ऑन फायर। पेश करता हूं

या क्वीन निशा ऑन फायर या ऑन फायर की ऑफ फायर ऐसे कुछ होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्रिय सुनने वालों, और इस गीत के बाद ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। एंड नेचुरल लगातार आप ऐप कर सकते हैं 020 3 3 9 8 9 8 पर।

या दैट वाज द लायन ऑफ बैठगाना देवेंद्र सिंह सेवनाथ मेरे प्यारे सुनने वालों 14 मिनट हो चुकल है और बीत चुकल है 8:00 या इट इज 15 मिनट ओवर द क्लॉक फन अख मेरे प्यारे सुनने वालों फिर एक बार तहदिल से आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक शुभ रात्रि शुभ वीकेंड शुभ शनिवार और शुभ शनिवार चून किए हो आप यूआर पर जहां पर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर पेश हो रहे हैं बहुत ही हफ्तों के बाद और दिल आपका हम बहलाएंगे रात्रि में 12 बजे तक तू जाने है तो वादा के मुताबिक यहां से एपर्स के नाम से गीत हम चलाएंगे आपके नाम से मैं एक लोकल चलाऊं Dan moet je inderdaad wel gaan appen naar 020-363-0808. Aap app keringe, aap ka naam vermaayenge, aap kahan se app kar rahe hain. En natuurlijk aap hi hum se kahenge ki hum mangila ego soul gana, ki hum mangila ego chalta gana. Bas yehi kaafi hai, mere pyare sunne walo. Daar is geen wiskunde bij nodig. Toe jaane toch. और आज का पहला नगमा पेश करने जा रहा हूँ रोटरडैम शहर का भैया जॉनी कालीचरण जी के नाम और या भैया लुइक वकांसी खात वेल कोर्ट मा वेल खनोत और हम देख रहे हैं वो दिन जब भी हम फिर वापस जाएंगे वकांसी से लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा गोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से तो अभी वो दिन नहीं आएंगे भैया जोनी कालीचरण ऐत रोतनम एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंजॉय ये नगमा जो आपके लिए हम चलाने जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए

Ja. अमरीशी प्रसाद मेरे प्यारे सुनने वालों विद फॉर्मेंसी फ्री स्टाइल हमारे गायना जी का एक सिंगर है अमरीश प्रसाद। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों और जितने लोग भी ऐप किए हैं 0 3 3 9 9 9 पर उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का जो नंबर है उनके नाम से गीत मैं चला रहा हूँ। और मैं देखता हूँ अपने लिस्ट पर देनहाग शहर का उषा जी थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं। Enjoy your weekend, enjoy you are, enjoy Saturday Night Fever. और लेडी संजना जी की आवाज में गीत हमने तैयार करके रखा है द लेजेंड का एक नगमा संजना जी ने गाकर सजाए हैं। मैं उषा का नाम करता हूँ अर्जना।

प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसते हैं, मोहे रगड़िया दिखा जा। लेडी संजना जी की आवाज, ओरिजिनल नटुलक फ्रॉम द लेजेंड रामदेव चैतू जी, उस्ताद रामदेव चैतू जी का ये नगमा। और मैं देखता हूँ प्लेलिस्ट में एक दो लोग और गाए हैं, देखते हैं कैसे प्रोग्राम आगे चल रहे हैं। तन्वी वही दंदरा एक नोखन फेरसी इरफान, और तू जाने चाहिए जवा कैसे हुए, तो जहाँ एक गाना पॉपुलर हुए तो सब कोई गावे लगे। इधर इन मुतत सिंह भैया, ठीक सरे आठ का वक्त है और मैं आगे ले चल रहा हूँ प्रोग्राम को। थोड़ा सा इस मौसम में कभी कभी ये मन करता है फारा करने के लिए, तू जाने तो थोड़ा सा फारा हम करें। और हमारे साथ जो है फारा करेंगे रोतदाम का नताशा और राकेश जी। राकेश जी मोयवेर में अपन तोयन में बेसखबा है, फिर भी करे हैं एंड फोल्ड वेक सी एक रिजल्ट। एक बैम बन्यूट नाउ खनित ऑफ यूली फाइन यूली वीकेंड नताशा जी और राकेश जी, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर एंड फार हेरलक अट वीकेंड और नार अट न्यू वेक टू। रिक हेदू और रखिलियो आलबेरग मेरे प्यारे सिनवाल।

Ja, ja, ja, varen, varen over de baren. Or varen, varen karna over de zee. Or jo abhi varen na karal hai. वो कभी ना जानी कैसे गो सेमान जिए भैया सोलांगत खुद खात जाना तो हम भी जाला दोस्तों हिती प्रेमियों के साथ जाता हूँ कैसे बोला कतिया लगावे तो समुंदर पर तो देखिए चिजवा कैसे जाए तो अब हाफन से कि डॉक से कि जैसे चिजवा बोले काद से तो अब धीरे धीरे तू फार करिए तो पनिया कुछ ना है रुस्तक है तू बैठिए कभी कभी तो तू सोचे ए मान लाओ को तमा हम रोकनी तोर मार पहले तमाकू करत रहली यही फिलियार तुरु तुन वास एक नोख यंग अनजान एन अन्ने क्या लेकर बीच मोईवेर लेकिन भैया जहां तू गए तनी बीच समुंदर पर और हल्फा वल्फा मारे लगी वही तो चिजवा जा है पुक पुक ये वेल नी मेर कतिया लगा वे बोल फेंक चास नेत और चली भागिया जाए वेर तुरुख ऐसे बोल जाए ये अपखे में मैं ये सो हो जैसी थाली में वाटर ऐसो में सी हील माल खे वाटर इधर वारे सत वाटर नीचे तकिया तेरी नीचे पनिया है तो हम दुई डाई कर ली तो बोले ना भैया ये हमारे Ja, ik hou wel van hengelen, gewoon lekker aan de kade zitten. Of op een rustige water, doe jij net op. Suriname met Blommestein Meroa. Daar is leuk. Kijk, Tukunari. Ik eet het niet, ik eet geen vis. Maar, mooi lekker. Kati alle gauwe, mooi lekker. Or kabi kabi, piranha bihawe. Or hoa, die Bosland Kriolen eten dat. Dat wist ik niet. En het is een keer gebakken. Maar die jalbazi met bakab hel, dat je jwakab hel, die buitenkant bruin bel. Lekin bitra begaar naar houdt. Dan kalili. Maar gelukkig, waar de vakanties er echt liet. Natuurlijk, ik doe go, toen ja nee, ik pek, doe pek. Ojadra. Dan kon je het zo wegspoelen. Maar het was niet vies op zich. पिरानिया जैसे को बड़का कुर्बिया तो लेकिन हमें भैया माफ कर दो मैं खो अल्फा फार जब भी जाता हूं एक देश जहां पर मोख लखाई थे फार करिक डन खाए कालते तो अल्फार मैं खूब खेन स्पीड बहुत अख्तख दिंग की ऐसे हल्फा मारे पाच पाच जाने तो ना एक खूब खेन सेंसाची सेंसाची से पिकल मलाल खात हमारे देश पर नाम है अम्सदाम सेंट्रम में जो रहते हैं रिया कल्लू जी आपके अभी आए एन रिया ये भी लमाल खलाएक पोर लेकर खनीत फानत लेव मजा ले इस जीवन का कल किसने देखा है भरपूर आप एंजॉय करें फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि आप एंजॉय करें उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर और खास करके रिया जी ये नगमा जो आपके लिए मैं चलाना जा रहा हूँ एंजॉय योर वीकेंड एंड थैंक यू फॉर योर एपिया कविता सुखू मेरे प्यारे सुनवालों

jak witak, cuku, mery pery synolo, mery formacji, and to the band, tyranesia, heerlijke bachata, heerlijk om hierop te dansen, maar je moet het wel weten, KC. Want agar ganwa jai London or tour step one jai Tokyo, tada mooi lagi toch. ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनवालो और घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं तांदे सत 14 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाफ नी सरे 8:14 गुजर चुके हैं वीकेंड है शनिवार है आप भरपूर एंजॉय करें और मैं देखता हूं वक्त तो कुछ ऐसे हैं कि शायद मैं दो नगमाएं लोगों के लिए पेश कर पाऊंगा धारणा इज द टाइम टू कोर्ट फॉर एन वॉलीड खलीचे Maar we gaan kijken hoe we het gaan lappen. Aap bhi chahte ki aapke naam se main geet chalaun mere pyare suno walo. To aapko app karna hai 020-363-0808. Geen titels doorgeven bhaiya. Toe jaane hai toch. Ab bol ye van to mangi ganwa o ganwa. Na na na. Het is allemaal locals. Aur jaise maine kaha lagbhag 400 gaane hai. Aaj hamari ye playlist mein. और उसी में से गीत हम निकालेंगे आप तक पेश करेंगे बहुत सारे नए हैं कुछ पुराने भी इसमें शामिल जैसे भी होंगे सेवा में पेश करेंगे इवन कैक नार्वी वी गान नू हां अम्स्टेलवीन की ओर हम आपको ले चलेंगे वहां पर भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्यारी समधिनिया हमार सुशीला चंद्रिका सिंह जी हमेशा जब भी मौका मिलता है चून किए करते हैं उजाला रेडियो पर और हमेशा ज्वाइन करते हैं उसके लिए दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद हम आपको कहते हैं एक गीत हमने तैयार करके रखा है एक पुराना नगमा है जो फिर से सजाया गया है रविंद्र शिवनाथ और सविता सिंह जो आजकल एक खूबसूरत म्यूजिकल जोड़ी है ये दोनों मिलकर गीत गाएंगे सुशीला चंद्रिका सिंह जी के लिए आई एम सेल्फी

सौ साल पहले मुझे तुमसे बस प्यार था और आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, जो फिर से गाए हैं, सजाए हैं, और वो भी द लायन देवेंद्र सिंह सुनाथ और द क्वीन, द चटनी क्वीन ऑफ ट्रिनिदाद एंड नॉट अदर देन नटुलक सविता सिंह। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस आखिरी गीत के बाद खावाना द ब्रेक फन

या नीले नीले अंबर पड़े चांद जब आए प्यार बरसाए और हमको तरसाए। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमा 13 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 9 बजकर। वक्त तो इतनी रफ्तार से आगे निकल रहे हैं मेरे प्यारे सिनेमा। 5 घंटे का ये प्रोग्राम में भी लगता है मैंने शुरू किया है और देखो ना 3रे घंटे में मान पड़े हैं। रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। मैं हूँ रतन राम लाड़े पांडे और स्वागत करता हूँ आप सभी को। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है हमारे इस देश में और ना जाने आप कहाँ कहाँ सुनते होंगे। शायद अभी सूरज वहाँ उगने लगे हैं या दोपहर का वक्त है। जहाँ पर भी होंगे आप, जिस हाल में होंगे आप, तहदिल से स्वागत हम करते हैं। सैटरडे नाइट फीवर में गाने फिल्मी, ज्यादा से ज्यादा फिल्मी सॉन्ग्स जो फिर से गाया गया है, सजाया गया है, आप तक मैं पेश किया करते हैं। और एपर्स के नाम जो लोग ऐप करते हैं स्टूडियो में, ये कश उठाते हैं ऐप करने के लिए, हाय हेलो कहने के लिए, तो उन सभी के नाम से भी सैटरडे नाइट फीवर में उनके नाम से गीत मैं चलाता हूँ। और अगर आप ऐप नहीं करेंगे तो गीत हम चलाएंगे यूं ही, क्योंकि प्रोग्राम तो मुझे बनाना है, सजाना है ना। एन एच ओसो न सही 020-363-0008 020-363-0008। एक गीत हो जाए और उसके बाद में एक सूचना है जो आपको हमें बताना है। अम्स्टर्डम शहर में आईफी जहांगीर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आईफी जी हमेशा सुनते हैं, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, पावर करते हैं। आईफी डंकी वेल, शुक्रिया करम मेहरबानी आपके सपोर्ट के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और ये नगमा जो आपके नाम करता हूँ।

सोने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो जैन की आवाज, दैट वाज वेल खावा आवर, आज 1994। मेरे प्यारे सुनोलो, 7 मिनट बाकी हैं सरे 9 बजने में, 7 मिनट फोर द क्लॉक फन 3:30। एपर्स के लिए, जिन लोगों ने ये कश उठाए ऐप करने के लिए, उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूं। और अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, हम चलाने जा रहे हैं, और वो भी स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी के लिए, जो हमेशा भी प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। धन्यवाद स्वाग फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट, सोसो लोबी तू जाने है तो। मैं एक नगमा सुबी का गाया हुआ एक शम्मी कपूर का एक मेटली है, मैशअप है, स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह के नाम आयुत सुतमेर।

या दैट वाज सुबी, मेरे प्यारे सुनने वालों, सुबी शमी कपूर का एक मैशअप गाकर सुनाए हैं। और सुबी का ये नगमा रिलीज हुआ फोकस में हर खासे यूनी आप तक हमने पेश किया। अब एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, वे बैक वे बैक वे बैक, जब तुलों सब और जवान रह ले। आशीष भक्त मीट्स मस्ताना, ये एल्बम से गीत निकालेंगे और आशीष भक्त जी की आवाज में एक खूबसूरत गीत रफी साहब जी का, जो इन्होंने फिर से गाए थे, सजाए थे। ब्रेदा का मनेर एंड मफराव बिहारी जी के नाम करेंगे। थैंक यू लिवेल फॉर अटैचमेंट, ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल। और आप सभी भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, जब भी आप सभी को मौका मिलता है आप ही ऐप करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए मफराव एंड मनेर बिहारी जी। आशीष बक्स का ये नगमा आपके नाम, दारिन ब्रेदा।

मेरे प्यारे जिनोलो, क्या नगमा, क्या आवाज। En hij heeft het gedaan hoor. Prachtig en mooi begeleid ook door Sabroso. Michel Krul, keep it up. En blijf vooral zingen. मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घर की तरफ तो 11 मिनट तक गुजर चुके हैं और वो भी 9:30। वीकेंड है, शनिवार है, सभी मंगन में है, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर आप सभी मंगन में है, एंजॉय कर रहे हैं, तो एक और ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग क्यों ना पेश किया जाए हियर ऑन यू आर। और मैं देखता हूँ हमारी लिस्ट पर नाम है अम्सदम सिंड्रोम का प्रभा। प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एम प्रभा जी, आप ही हमेशा ऐप करते हैं, दिल से थैंक यू वेल फॉर योर सपोर्ट। एंजॉय आज बाकी ना बताई ले कौन सी बनाई ले, हरदम बतावे है। वेल, हम आपको बता दें कि एक ईद ही लेकर बारस 12 में चटनी। En vandaag ben ik helemaal alleen in de studio. Maar dat is niet minder gezellig. Want toen jij in mijn hoena. En waar ik ben. Dan heb ik niemand anders nodig. Achi music ho. Ujala radio ho. Aur aap sabhi ka saath ho. To aur ka liye. Prabha ji. Sagar Malik, one of the finest singers hamari Holland Kinder. मैं ये गीत आपके नाम करता हूँ। एंड इट इज हील माल फेयर ऑन द पेयर्स। कहाँ है, कहाँ है, ओ यहाँ है। एंजॉय योर वीकेंड।

दिल कहता है चल उनसे मिल, और मिलते ही कदम रुक जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आसिक नीत फरखीत कुमार सानू का एक नगमा, और सागर मालिक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड किंगडम में, इन्होंने ये गीत फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक हमने पेश किया है बहुत प्रेम और प्यार के साथ। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को तो मालूम है कि वातरालामाल खात खबर ओवर टू वीक्स Zaterdag en zondag 29 en 30 augustus ko. Ujala Radio ka Indoor Summer Edition Brasa Fest jo rachana rachaya ja raha hai. Dana shahar mein Brasa Fest 2026 Jia Event Center mein. Waqt par aap apna ticket khareed le, want de tickets zijn nog €8.50 als ik het niet vergis. En het is de tweede fase. Als je fase je nikkel jijga, dan gaan de kaarten echt duurder zijn. Oh, de Brasa Fest. Ik barka gezellige Hindustanse event. Oh, is salka. Kana, Pina, music, dance, shopping, market, Aapka culture, Palwarka entertainment, Bollywood vibes or beat. Sabhi, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Jia Event Centers Den Haag mee. Wacht per aap op na tikte, gerit lenena. Tara tara ki, muziek informatie, or dansgroepen, artiesten, jo bhi aap naam lenge, hamari is scene ke under mee, sabhi maujud hai. Eén weekend, twee dagen, Jia Events. सेंटर Den Haag शहर में Brasa Fest, फूड हॉल भी रहेंगे, लॉन्च करने के लिए भी हॉल है, लगभग 10,000 आदमी आ सकते हैं। टिकट के लिए आप चेक करें www.brasafest.nl। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं पेश करने जा रहा हूं, और इस घंटे का

प्रोग्राम में हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह लोग कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भी जाते हैं उजाला रेडियो अपने साथ लिए जाते हैं। प्रार्थना हम तो तो मीके डंकीवेल फॉर ये एपिया एंड ये खनित फन सुरीनाम मा ओक नेचुरली फन यू आर एंड फन सैटरडे नाइट फीवर। बहुत बहुत डंकीवेल आपके एप के लिए। ये नगमा फन सुरीनाम्स बेंतोर द गुड फाइव्स आपके नाम करता हूँ मीके। एंजॉय

या द फॉर्मेसी नो मर्जी मेरे प्यारे सिने वालों, वन बाय वन और जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा जो किया है तुमने मुझसे, ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिने वालों, हियर ऑन यू आर जो हमने आप तक पेश किया है। 10:15 का वक्त है मेरे प्यारे सिने वालों, दिस क्वाट ओवर 3 आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूँ आपका यारो का यार रतन राम दुल्हाड़े पांडे। सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं ब्यूटीफुल लोकल्स एनथ इज हर्सी का खसेलख, क्योंकि हम हैं, आप हैं और वीकेंड है, खूबसूरत म्यूजिक है, मोई वेयर है और काली है। और प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं अलमेरे शहर का भैया तूनी लेकर क्लार में त्वेरक होपल बे आल्टोइस और एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। रविंद्रनाथ ऑफ रविंद्र इसी है, रविंद्र भोला सिंह, इनकी आवाज में मैंने गीत को तैयार करके रखा है। Het gaat over buurvrouw. Ik weet niet hoe je bent, Tony, met je buurvrouw. Hopelijk een goede band, hè? Warna garbar. Tony, dankjewel. Enjoy your weekend. Aur aapke aapke liye dil se dankjewel. Ye nagma Tony Isri ke naam uit Almere.

Bunii tu cacărdele. Natürlich bürman nu a gusait. Or bürman jab gusait jai. Da ka hui. Tuni, dankjewel. Altijd leuk. Ab jab epkerte hem. Altijd lol met jou. Dankjewel voor je appje. Enjoy your weekend. Or tu jane toch. Altijd blijven lachen. अब की बार गीत जो हम चलाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, दूर रहते हैं वो, बहुत दूर, लेकिन हमेशा सुनते हैं, और जब ही सुनते हैं हमेशा ऐप भी करते हैं. एंड दन गाँव हेलमाल फेर वेग ओवर द अटलांटिक ओशियन नार इट लैंड फन ट्रंप. नो या इट इज नीट सेन लैंड मार वहां राज कर रहे हैं इस वक्त. वी गान टू टेक्सास, द स्टेट टेक्सास, जहां पर अजय और सुनीता अपने इति प्रेमियों के साथ जुड़े हुए हैं. उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर. दार इज इट नोग मिडाग ऑफ ओख्तेंड. तो गुडमॉर्गन ऑफ गुडमिडाग. बेहद खुशी है हम कि आप सभी भी वहाँ भरपूर एंजॉय कर रहे हैं. अजय और सुनीता जी, टेक्सास, यूएस ऑफ ए. एक गीत हमने तैयार करके रखा है हमारे प्रिय सुरिनाम का एक फरमासी है, द स्वीट मेलोडीज, इनका एक नया रिलीज. मैं करता हूं आप सभी के नाम वहां तुमसे मिलना और प्रिया.

शादून बिंद्राबन मेरे प्यारे सुनने वालों, जब किसी की तरफ ये दिल रुकने लगे और बात झुकने लगे और बात आकर जुआ तक रुकने लगे, तो बस आंखों ही आंखों में बात होते हैं। ब्यूटीफुल इनकी आवाज में ये गीत गाया गया है। ये है यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको इतला दे हम कि 11 बजे के बाद हमारे ये हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ये प्रोग्राम सजाएंगे रात्रि में 12 बजे तक। लास्ट यूर्च इस सोल यूर्च आपको मालूम रहे। जेनी यहतन हैप्पी खुस्तूर्त, दंकी वाला जेनी, एंड नटूलक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, भारत देश का इंडिपेंडेंस डे है। किसर वास फ्रॉम पाकिस्तान, आज भारत देश का है, तो सभी प्रिय सिनेमालों को हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जेनी के नाम मैं करता हूँ अगले गीत, सुबह गाएंगे और साथ में देंगे पी डंकी वाला जेनी।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जिन वालों, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। या इधर इन वेल दैट है द चहल फिल फन फनी पर्सन आउट, तुम मुझे जितना प्यार दे सकते हो दे, लेकिन वापसी में उतना ही प्यार हम उन्हें देते हैं ये भी सोचना पड़ता है। प्यार के भूखे हैं हम सभी चाहते हैं प्यार। वहां देर इज एलेंड खनुख ऑफ द इज अ वर्ल्ड, तो अगर थोड़ा सा प्यार हम एक दूजे के साथ करें तो कितनी खूबसूरत होंगे ये दुनिया। सत्या जी आप भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं अमस्टरडम में। सत्या जी नालांगा तैयार आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो बेहद खुशी है हम, धन्यवाद आपके अब के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में सागर मलिक, इनकी आवाज में मैं गीत सत्या के नाम करता हूँ। सत्या जी एट अमस्टरडम

सागर मालिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड कन्नड़ में सागर मालिक जी। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त कुछ ऐसा है कि इस घंटे का आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे और उस आखिरी गीत के बाद 11 बजे के ब्रेक आप सुनेंगे और ब्रेक के उस पार नतुलक आप सभी से फिर हम मिलेंगे, पेश करेंगे हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा और जिसमें अली मसूल्स टू द क्लॉक फन मिडनाइट 12 यू। एक अब इन लास्ट नाम हीरो ऑफ माय लाइफ और वो है टीचा ऐतालमेर। टीचा जी ऐतालमेर, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। ये बैन अल हेरलक रिलैक्स एंड ये खनित फन उजाला रेडियो एंड नतुलक फन सैटरडे नाइट फीवर खास

पेश कर रहे हैं। रतन आपको फिर एक बार स्वागत करते हैं और डंकी वाल कहते हैं चून करने के लिए। दिस इज फॉर योर टीचर अल्मेरा।

Oeh, dat was mijn foutje. Dankjewel. Sorry. De badia, orde geet gaat hem hoger. Chode, het was maar een paar seconden nog. मेरे प्यारे सिनेमा ये उजाला रेडियो है और इस वक्त घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 14 मिनट गुजर चुके हैं वो भी 11:53 सैटरडे नाइट फीवर आप सुन रहे हैं आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो पर एन हमारे प्रोग्राम हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा मेरे प्यारे सिनेमा वालों क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे और इस घंटे में अली मसूद Wahanar and Moya Caribbean Soul from Mr. Ray Tujhse naraaz nahi zindagi

मिस्त्री मेरे प्यारे सुनो वालो, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। और इस गीत के बाद यूनियन फ्लेक्स की आवाज में कि मैं अगर कहूं, रिमेंबर दिस इज यू आर, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए www.ujala.nl।

0: यूनियर फ्लेक्स मेरे प्यारे जिन वालों इनकी आवाज में
1: मेरे मन को किया तू
0: मेरे प्यारे सुनने वालों
1: क्या इशारा
0: उजाला रेडियो पर द ब्यूटीफुल सोल्स।

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, शिवा लखन्ना मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल सॉन्ग इन्होंने फिर से गाए हैं, सजाए हैं। वहाना तो फरमासी न्यू ईगल्स और रविंद्र दशरथ जी की आवाज में अगले गीत हम पेश करेंगे और इसे हम नाम करेंगे दनहल्दर का इल्से राम दयाल जी के लिए, जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। राम राम सीताराम इल्से जी एंड धन्यवाद वाला आपके आपके लिए। ये गीत रविंद्र दशरथ का गाया हुआ इल्से के नाम इल्से राम दयाल एट दनहल्दर।

Ja, dit is Ravin Dasarath, mijn pyare sunwalo. Met de formatie The New Eagles. Bilkul fairs van de pairs. घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी सरे 11 बजकर 8 मिनट तो ओवर द क्लॉक फ्रॉम 11:30. सागर मालिक वंस अगेन प्रोग्राम में पेश हम करेंगे ये नगमा के साथ ओक फेयर्स फॉर द पेयर्स पेश करता हूं. जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले हैं.

सागर माली की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, जीवन के दिन छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। और अब की बार गीत एक हम चलाएंगे अपने एक भैया के लिए। जब से हम हॉलैंड में हैं तभी से ये मेरे बड़े भाई हैं। एंड अफ्लोपर वुंसदाग 12 तारीख अगस्त को इस है ऑनफरवाह उफलीर। तो उनके हाथ में मेरी नजर में एक गीत आए हैं तो मैंने सोचा प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्यों ना लकी सिंह का गाया हुआ ये नगमा उस भैया के नाम करूं जिसका नाम है विजय तुकुन, फलेर विजय कुमार तुकुन। Till we meet again, Rilsa.

लकी सिंह की आवाज मेरे प्यारे सुनो, अपने उस बड़े भाई के लिए विजय कुमार टुकुन के लिए, जो जब से मैं हॉलैंड में हूं हम साथ बड़े हुए और बीते हुए बुढ़वार बहुत ही कम उम्र में वो साथ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम उनसे मिलेंगे जरूर और उनकी याद में लकी सिंह का गाया हुआ ये नगमा हमने पेश किया है। वखानार अर्नोल्ड मलाहे, रिमेंबर दिस इज सैटरडे नाइट फीवर, हियर ऑन यू आर।

अर्नोल्ड मलाहे की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। हाँ जी, और वो वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं सेवा में। 5 घंटे का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं

और जल्दी निकला गया है क्योंकि आपने भरपूर भी साथ दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। ये प्रोग्राम अगले हफ्ते 22 तारीख 22 अगस्त को फिर हम सजाएंगे सैटरडे नाइट फीवर हियर ऑन यूआर। मरना चुलक मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले हफ्ते में जबकि सेवा करने चले आएंगे बुधवार के रात्रि को लतिस निहंती ना अगस्त लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर रात्रि में 6 से 9 बजे हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। एंड ऑन द डखावंत, हाँ जी, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, 20 तारीख अगस्त को भी आप सभी के सेवा में हम हाजिर रहेंगे यही स्टूडियो रोटरडम से, और वो भी 8 बजे से 11 बजे जबकि हम पेश करने वाले हैं प्रोग्राम दिल की आवाज। तो यही उम्मीद और आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की आप सभी भरपूर मेरा साथ देंगे। आज जिस तरह से हमने प्रोग्राम को सजाए हैं, बनाए हैं, उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप सभी ने एंजॉय की है, मजा ली है। कोशिश तो हमारा लगातार था आपका दिल बहलाने के लिए, तो बस उम्मीद करता हूं कि इसमें हम कामयाब हुए हैं। आज के लिए जाने से पहले बस आप सभी प्रिय सुनने वालों से यही कहना चाहूंगा कि रहा ये जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर।

ताली तक धुम तक ताली तक जम तक धलाम तक झुक तक तक नक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक जम धरिता जग धरिता जन जाने को कुदारी दाबू तारी के ताली धरिता जग धरिता जन जाने को कुदारी दाबू तारी के जम धरिता।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।